और अगला जो खाना मुकेश जी की आवाज में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो भी उनका एक आइकॉनिक खाना है, और ये आइकॉनिक खाना है फिल्म पूरब और पश्चिम से, और पूरब और पश्चिम से वाला गाना मैं थोड़ी देर में आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना है फिल्म छलिया का। इसमें थी उनके साथ नूतन जी, और बहुत ही प्यारा गाना है।

2:20 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा मुकेश जी के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का। नंबर है 02981622777 02981622777।

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ISRO इसरो में खलबली मची हुई है। हाल ही में इसरो से 100 से अधिक सीनियर साइंटिस्ट ही नहीं सीनियर साइंटिस्ट ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना के लिए अर्जी डाली और बहुत से जो हैं वो सीधे रिजाइन ही कर गए। इनमें गगनयान चंद्रयान 3 और स्पेडएक्स पर काम करने वाले साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सैलरी पर चले गए, कुछ इसरो की एचआर पॉलिसी से तंग होकर रिज़ाइन कर गए, कुछ इन रेजिग्नेशन से भारत के मंगलयान और भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स पर जो काम हो रहा है उस पर भारी असर पड़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन आपकी फरमाइश की उम्मीद हमें कोई दिक्कत नहीं दे रही है। और अगला गाना जो है एक फरमाइशी गाना है और फिल्म है बम्बई का बाबू, देवानंद साहब थे इस फिल्म में और बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये बम्बई का बाबू। एक अलग तरह की कहानी थी जिसमें कि ये जो चरित्र है जिसको निभाया देवानंद साहब ने वो बॉम्बे का है और कोई अच्छे कैरेक्टर वाला नहीं है, जेब कतरा टाइप है, वो उसके हाथों एक खून हो जाता है और वो जिसका खून होता है उसके घर जाता है उनको खबर देने, लेकिन उनकी हालत देखकर वो कुछ कर नहीं पाता। बाकी की फिल्म की कहानी यही है कि वो किस तरह से उस परिवार की मदद में जुट जाता है।

यूं तो पिछले महीने से एक महीने से ज़्यादा से ये बात समाचारों में आ रही है, लेकिन पिछले सप्ताह टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट सभी पे छाया रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और विद्रोह और सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है अनशन। नीट, NEET, ये एक मेडिकल एग्ज़ाम है जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेजेस का दाखिला तय होता है, और अब जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में उन सब में दाखिला नीट के द्वारा ही तय होता है। तो इसके लिए तो बात यूँ है कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और उनमें से जो सफल होते हैं उनको मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलता है। नीट पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में सोनम वांगचुक को सरकार पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल ले गई। उनका कहना है कि अदालत के आदेश पर ऐसा किया गया। सोनम वांगचुक की सेहत की जिम्मेवारी अदालत ने सरकार को दी। सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल के अनुसार वो सोनम वांगचुक हिरासत में तो है नहीं, तो पुलिस क्यों मौजूद है अस्पताल में, उनके कमरे में और कमरे के बाहर। सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सोनम वांगचुक का अपने वकीलों और डॉक्टरों से संपर्क टूट गया है, ऐसा कहा उनके वकील कपिल सिब्बल ने। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में करवाना चाहता है परिवार। क्या भारत में सभी को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की आज़ादी नहीं है? और बहुत से लोग उनके समर्थन में उतरे। अभिनेत्री शबाना आज़मी ने जंतर मंतर जाकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, सोनम वांगचुक का समर्थन किया। संसद मार्च रोकने के लिए सरकार ने सेक्शन 163 लागू कर दी, जिसके अकॉर्डिंग 5 से अधिक लोग जो हैं इकट्ठा नहीं हो सकते। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया, कहा अस्पताल शिफ्ट गलत बात है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना लगाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया बीच बचाव के लिए, बातचीत के लिए। बातचीत सफल न होने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में पुलिस स्टेशन में उन्हें छोड़ दिया गया। संसद चलो मार्च शुरू तो हुई, लेकिन पुलिस कार्रवाई के कारण पूरी नहीं हुई। आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज किया गया और रबर बुलेट्स जो है चलाए गए। एक 21 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई, और राम मनोहर लोहिया जो बीजेपी के नेता हैं पूर्व, और एक समय ये था कि वो शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने वो भी इसके समर्थन में उतरे। कथित तौर पर वर्दियों में नेम टैग नहीं लगाकर सिविल कपड़ों में भी कुछ लोग डंडे वाले बनकर भीड़ पर डंडे चला रहे थे। बर्बरता यहाँ तक पहुँची कि विद्यार्थियों की हड्डियाँ टूटने के समाचार थे। ये था इस बीते सप्ताह का हाल, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि केवल यही नहीं, बहुत कुछ हुआ, और उसके हाल हम इस गाने के बाद आपको बताएंगे। कि ये फिल्म उपकार का गाना, जिसे पसंद किया है राज ने।

और कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा हुए इस विरोध प्रदर्शन में और क्या क्या हुआ? बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने प्रदर्शन को गलत बताया और कहा सरकार ने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत काम किया है, प्रदर्शन की जगह पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। मंगलवार को सोनम वांगचुक को जो है अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें वेदांता सफदरजंग हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें वेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया। सरकारी डॉक्टरों की टीम वहां भी उनके साथ उनकी सेहत के चेकअप करती रही। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ भी छात्रों के समर्थन में उतरे। अभिनेता रितेश देशमुख और पत्नी जेनिलिया डिसूजा, अभिनेत्री आदिति राव हैदरी भी कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरी। कथित तौर पर वर्दियों पर नेम टैग का ना होना, जैसा मैंने पहले बताया, एक विवाद का मुद्दा बन गया और लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो भी पुलिस है या रैपिड एक्शन फोर्स है वो बिना नेम टैग के वहां आई और विद्यार्थियों पर अत्याचार किए। 23 जुलाई को 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने ये फैसला लिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिंसा से दूर रहने के लिए कहा। और 23 जुलाई दैनिक ट्रिब्यून में समाचार आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपित व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। कहा हमारे युवकों के भविष्य से ज़्यादा कोई ज़रूरी बात नहीं है, हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने कहा यह मामूली मरम पट्टी है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बॉलीवुड से समर्थन में आने वालों में शामिल हुए सलमान खान, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, करीना कपूर, कमल हसन। करीना कपूर ने कहा युवाओं की मांग सुनना कोई एहसान नहीं है उन पर, बल्कि ये सरकार का फर्ज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइजरी जारी की कि जंतर मंतर और आसपास के होने वाले किसी प्रदर्शन में वो शामिल न हों। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी छात्रों के समर्थन में उतरे और कहा चिंताएं और सरोकार वास्तविक है, हल करे सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल भी समर्थन में आए और कहा मोदी और शाह को दिखाओ कि जनता उनकी मालिक है। और भी बातें प्रदर्शन के बारे में इस गाने के बाद, जिसको फरमाइश की है सुधा ने, और ये है फिल्म विश्वास का गाना, कल्याण जी आनंद जी के संगीत में ढाला हुआ और मुकेश जी की जाहिर है आवाज। और हमारा नंबर है 02 9816 2777।

और इस प्रदर्शन में आगे क्या हुआ वो आपको बताता हूँ कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बड़ी संजीदगी से और बहुत प्यार से पुलिस वालों और आरएएफ और जो दूसरे वहाँ पे लगाए गए थे लोग जो सरकार ने लगाए थे लोग जो के कंट्रोल के लिए थे उनको उनसे बात करते हुए एक बड़े प्यार से उन्हें खाना भी दिया और कहा उन्होंने डंडे बरसाए छात्रों और सेवादारों ने उन्हें खाना खिलाया आरएएफ और पुलिस को। फिल्मकार अपर्णा सेन बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस भी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। फिल्मकार अपर्णा सेन ने कहा मैंने इन छात्रों से सीखा है कि प्रजातांत्रिक मतभेद क्या होता है। मैंने उनसे सीखा है कि संविधान में कैसे विश्वास करें उसके अनुसार कैसे चलें। इन छात्रों ने मुझे आशा की किरण दिखाई है और इस बारे में मेरा विचार ये है कि सरकार इस सब के होते हुए भारी समर्थन के चलते हुए इस प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन के चलते हुए नीट पेपर लीक पर जायज कार्रवाई की मांग के चलते हुए कैसे इस पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो के आतंकवादियों के लिए लगाया जाता है लगाने का फैसला ले सकती है। निहत्थे छात्रों पर रबर बुलेट्स लाठी चार्ज और वाटर कैनन चला सकती है। क्या ये प्रजातंत्र के हकों का दमन नहीं है? देश भर के युवा जब सड़कों पर हों तो कैसे और क्यों सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती न्याय दिलाने के लिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा तो ज़रूर की गई है लेकिन एक्शन अभी बाकी है। और कल शनिवार 25 जुलाई आखिर वो दिन आ ही गया। छात्रों ने नीट पेपर लीक के विरुद्ध एक महीने से ज़्यादा मोर्चा लगाया था। सोनम वांगचुक ने 27 दिनों तक अनशन रखा था। पुलिस ने निहत्थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रबर बुलेट्स चलाए थे, वाटर कैनन चलाए थे, इंटरनेट को बंद कर दिया, लाठी चार्ज किया, जख्मी छात्र अस्पताल पहुंच गए और कईयों की हड्डियां टूटी हुई थी जो अस्पताल ले जाए गए। सबकी सबसे बड़ी मांग थी पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्टर जो जिम्मेवार है उसका जो है इस्तीफा आना चाहिए, उसे इस्तीफा देना होगा। और 25 जुलाई को कल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नए एजुकेशन मिनिस्टर होंगे प्रहलाद जोशी और प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी कॉकरोच जनता पार्टी ने। और हम घोषणा कर रहे हैं आपकी फरमाइश की और ये जो अगला गाना है ये है फिल्म हिमालय की गोद में। मनोज कुमार जी थे इस फिल्म में, माला सिन्हा जी थी और ये गाना अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था और इसकी फरमाइश की है माही ने।

हाँ, और अत्यंत ही मशहूर हुआ था ये गाना। और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है, और ये फरमाइशी गाना है फिल्म एक नज़र का। और फिल्म एक नज़र में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब इसको सुना था उस समय के मशहूर गायक साहब ने, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे तो याद नहीं कि ये गाना मैंने कब गाया था, लेकिन जाहिर है उनको याद भी कैसे होता, क्योंकि ये गाना मुकेश जी ने गाया था और उन्होंने नहीं गाया था। और अनिल विश्वास जी के संगीत में ये था गाना। और उस समय, जैसे मैंने बताया, मुकेश जी केएल सहगल साहब की आवाज़ में गाने की कोशिश करते थे, और फिर शंकर जयकिशन का साथ हुआ तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि वो अपनी तरीके से गाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो पेश है आपके लिए वो गाना जिसने मुकेश जी को अत्यंत ही मशहूर कर दिया, और ये फरमाइश है मिसेस बिलमोरिया के।

0: 3:02 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा मुकेश जी के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा समय है और हमारा नंबर है 02981622777 02981622777।
1: Are you or a loved one in need of an aged care facility? The St. Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home is situated in Dean Park, just 40 minutes drive from Sydney CBD on a beautifully landscaped and leafy 3.9 hectares. There are group therapy sessions with qualified staff, spiritual counselling, outings and celebrations for birthdays and Catholic holidays. For more information, please contact the St. Elizabeth Aged Care Facility and Nursing Home at 1 Simons Road, Dean Park, 2761, or telephone 8818 8500. The St. Elizabeth Aged Care Facility is a proud sponsor of 2RRR.
2: Have you been to the Lifeline Shop in Gladesville? Lifeline's retail outlets contribute significantly to Lifeline's ability to help those struggling with life's difficulties. When you shop in a Lifeline store, you'll not only find great pre-loved items at a great price like fashion, furniture, and even plants, you'll also be contributing to helping Lifeline help others. So head on down to the Lifeline Shop at 1 Massey Street, Gladesville, at the back of the Gladesville Shopping Village, and help make a difference for people in need. The 24/7 Lifeline telephone number is 13 11 14.
3: Howdy. I tell you, there's nothing quite like a late night dose of the blues. That's blues music, of course. Well, 2RRR has got your evening blues covered with Smokestack Lightning on Monday and Thursday, 10 to midnight, and Rhythm Blues and Bacon Fat on Tuesday, Wednesday, and Friday nights from 11. Keep the dial on 88.5 FM or stream via the web on 2RRR.org.au and stay bluesy.
4: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush, and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
5: Support the bank that supports your community. Call, email, or visit station sponsor Community Bank, Homebush and North Ryde. Part of Bendigo Bank, the better big bank.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर। जयंत नार्लिकर, जन्म हुआ 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में। पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर एक मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, माता संस्कृत की स्कॉलर। बिहार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1957 में बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्स विलियम हाउस से बीए मैथ्स किया 1959 में। 1960 में टाइसन मेडल जीता एस्ट्रोनॉमी में। 1963 में पीएचडी की फ्रेड हॉयल के गाइडेंस में। एमए एस्ट्रोनॉमी में 1964 में उन्होंने मास्टर्स की। 1972 तक किंग्स कॉलेज में फेलो के तौर पर काम किया फ्रेड हॉयल के साथ। इंस्टीट्यूशन ऑफ थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी भी स्थापित किया फ्रेड हॉयल के साथ कैम्ब्रिज में। 1972 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस में प्रोफेसर बने। 1988 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स स्थापित किया पुणे में। और जयंत नार्लिकर जी को उसका फाउंडर डायरेक्टर नियुक्त किया गया। फ्रेड हॉयल के साथ उन्होंने जो है एस्ट्रोनॉमी में और नॉट लेकर ग्रेविटेशनल थ्योरी बनाई जिसके लिए वो मशहूर हुए, इसे हॉयल नॉर्लिकर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मैक्स प्रिंसिपल को मिलाती है, इन दोनों थ्योरीज को मिलाती है। इस थ्योरी के अधीन ग्रेविटेशनल जी समय के साथ तेजी से घटता है। 1965 में उन्हें पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण और 1996 में यूनेस्को द्वारा कलिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी जीवनी के लिए 2014 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। वो अनेक पुस्तकों के लेखक हैं और एक उनमें से है सेवन वंडर्स ऑफ द कॉस्मोस, जो उन्होंने 1995 में लिखी और 82 वर्ष की आयु में वो स्वर्ग सिधार गए। ये थी कुछ बातें जयंत नार्लिकर जी के जीवन के बारे में। उम्मीद है आपको इससे कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी। और अब चलते हैं वापस गानों की ओर, जो मुकेश जी की आवाज़ में है। और लता मंगेशकर और मुकेश जी के ये डुएट है और फिल्म है शोर, और ये बहुत ही अत्यंत ही पॉपुलर गाना हुआ था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, बहुत ही प्यारा गाना है। इसे सुनते हुए आप भी हमें बता सकते हैं आपकी पसंद क्या है। 02981 6 2777

और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है और ये है फिल्म फूल बने अंगारे फिल्म से। राजकुमार जी की थी ये फिल्म और मुकेश जी ने राजकुमार जी के लिए जब आवाज़ दी तो गाना अत्यंत ही पॉपुलर हो गया और ऐसा पॉपुलर हुआ कि आज भी हम इस गाने को जब सुनते हैं तो फिल्म में जिस प्रकार राजकुमार साहब ने इस गाने को पेश किया था वो आंखों के सामने आ जाता है। तो पेश है ये फरमाइशी गाना फिल्म फूल बने अंगारे।

0: 3:21 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का 02-9816-2777 पे। और अगर आपके कोई फरमाइश ही नहीं आपका कोई सुझाव हो वो भी आप हमें इसी नंबर पर बता सकते हैं या फिर आप mehakradio@yahoo.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं।
1: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: Hey mums, dads and carers, would you like to encourage your little ones who are up to 3 years old to become more involved in stories, songs and rhythms? Then Baby Bounce is for you. These free interactive sessions are fun and beneficial to everyone. Their aim is simply to instill a love of the library as well as to encourage early literacy. How good is that? They're being held on Fridays between 11 and noon during school terms at The Yarn, 64 Gladesville Road, Hunters Hill. For more information, telephone the Hunters Hill Council on 9879 9400.
4: 2RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
0: संदेश के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर आज मुकेश जी के गानों के इस कार्यक्रम में। मंगल पांडे जन्म 19 जुलाई 1827। ब्राह्मण परिवार में जन्मे मंगल पांडे 1849 में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हो गए। देश प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 के दिन गार्ड रूम के बाहर मंगल पांडे जी भरी बंदूक लेकर इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहे थे। धमकी दे रहे थे कि जो भी अंग्रेज लिखेगा वो उसका खून कर देंगे। साथी सिपाहियों को भी बुला रहे थे विरोध में शामिल होने के लिए। उनका विरोध था नए कारतूसों के खिलाफ। कथित तौर पर इन नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी जो के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए नामंजूर थी। उन्हें सील किया जाता था गाय और सुअर की चर्बी लगाकर। कारतूस लोड करने के लिए कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से उसके सिरे को दांतों से काटना ज़रूरी होता था। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये गवारा नहीं था। मौके पर सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉग ने मौके पर मंगल पांडे को हथियार डालने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट बॉग पर मंगल पांडे ने गोली चला दी। गोली उनके घोड़े को लगी। घोड़ा और लेफ्टिनेंट बॉग गिर पड़े। उठकर लेफ्टिनेंट बॉग ने मंगल पांडे पर तलवार से हमला किया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार से मुकाबला किया। ह्यूसन ने लेफ्टिनेंट बॉग को बचाने की कोशिश की और मंगल पांडे ने बॉग को जख्मी कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर अन्य सिपाही बाहर आए लेकिन दर्शक बनकर खड़े रहे। अंग्रेज अफसरों के साथ आए शेख पलटू ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की लेकिन जख्मी होने के कारण नाकाम रहा। उसी वक्त कमांडिंग ऑफिसर हियर से वहां पहुंचे और अपनी पिस्टल निकाल कर कहा कि हथियार डाल दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मंगल पांडे ने अपनी भरी बंदूक छाती से लगाकर गोली चला दी, लेकिन मंगल पांडे केवल जख्मी हुआ, उसका इलाज हुआ, मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 34 बटालियन को बर्खास्त किया गया फर्ज ना निभाने के लिए, लेकिन मंगल पांडे की शहीदी ने 1857 के गदर को जन्म दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और उसमें एक अहम मोड़ आया 1857 के इस गदर में। मंगल पांडे के सम्मान में 1984 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी निकाला था। 2005 में मंगल पांडे की याद में फिल्म आई थी मंगल पांडे द राइजिंग। मंगल पांडे का किरदार अदा किया था अभिनेता आमिर खान ने। ये थी कुछ बातें मंगल पांडे जी के बारे में। और आइए चलें मुकेश जी के गानों की ओर। और मुकेश जी का अगला गाना लता की पसंद का है और लता ने पसंद किया है मुकेश जी का गाना फिल्म कटी पतंग से, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM।

दैनिक भास्कर में समाचार आया कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और समाचार ये था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से शुरू हो गई। किंग चार्ल्स ने उनका उद्घाटन किया भारत का तिरंगा लेकर। भारत की एथलीट्स के दल की अगुवाई की मीरा भाई चानू ने और लवलीना बोरकोहेन ने। भारत के 125 एथलीट हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात चली तो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन ही 23 मेडल जीत लिए हैं, 12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, और भारत का एक मेडल है ब्रॉन्ज। और आपके सारे गोल्ड मेडल हैं क्योंकि आपकी फरमाइश हमेशा यहाँ पेश की जाती है जब भी आपकी फरमाइश आती है। और ये है फिल्म रजनी गंधा का गाना जिसे आवाज़ दी है मुकेश जी ने, कई बार यूं भी देखा है।

और 20 जुलाई को ये समाचार आया, एक ऑनलाइन समाचार सेवा है जिसका नाम है द वायर। द वायर पर 20 जुलाई को समाचार आया कि मध्य प्रदेश के छत्रपुत्र डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो चल रही थी केन बेकवा जमीन की स्कीम, वहाँ पर एक नदी है जिससे पानी निकालने और उसे जबरन जमीन अधिकृत की जा गई थी और उसके मुआवजे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को इतवार के दिन, ये आज नहीं लेकिन बीते हुए इतवार पिछले सप्ताह, पुलिस ने जबरन प्रदर्शन स्थल से लोगों को हटा दिया। ये अक्सर आजकल हो रहा है, किसी को भी प्रदर्शन करते देखते हैं तो उस पर या तो अत्याचार किया जाता है जैसे स्टूडेंट्स पर किया गया, या उन्हें हटा दिया जाता है, यानी किसी को प्रदर्शन करने के विरोध करने की इजाज़त ही नहीं है। ये कैसी डेमोक्रेसी है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पालन है? लगता तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं शायद हो। ये जो राज कर रहे हैं इनको हमारे से ज़्यादा पता है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि मुकेश जी की बेहतरीन आवाज़ के जो बेहतरीन गाने हैं वो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और ये गाना है महक की पसंद का, और महक ने पसंद किया है फिल्म मेरा नाम जोकर का ये बेहतरीन गाना। महक 2RRR 88.5 FM पर।

और अब बातें हमारी कर्म भूमि की, और कर्म भूमि की बातों में सबसे पहले बात है मैनली फेरी की। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मैनली फेरी के बारे में ना जानता हो या उसका नाम ना सुना हो। मैनली फेरी लाखों लोगों की पसंद रही है, उनमें किया यादगार ट्रिप सिडनी वालों के लिए न भूलने वाली याद है। चार फेरीज हैं मैनली से जो आती हैं सर्कुलर की, और इन चार फेरीज जो हैं इनको बहुत बड़ी फेरीज माना गया है। इनमें शामिल हैं फ्रेश वाटर, क्वींस क्लिफ, नैराबीन और कॉलरॉय। 40 सालों से ज़्यादा से ये सेवा में हैं। अब कॉलरॉय को छोड़कर सभी को रेनोवेशन के लिए भेजा जा रहा है, और इसका खर्च आएगा $71 मिलियन, $71 मिलियन। कॉलरॉय की बनावट ऐसी है कि उसके कारण उसे रेनोवेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे हटा दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि वर्ष 2000 के ओलंपिक्स में ओलंपियन जाली स्टेगल कॉलरॉय पर ही मैनली से सर्कुलर की आई थी ओलंपिक टॉर्च लेकर। पिछले साल इस साल अभी भी 63% लोग ऐसे हैं जो सरकार पर हाउसिंग के मुद्दे को हल ढूंढने में विश्वास नहीं रखते। उनको नहीं विश्वास कि सरकार हाउसिंग मुद्दे का हल ढूंढ पाएगी। और बिलियनर माइन जो चलाती हैं राइनहार्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाने वालों को $20,000 देने की घोषणा की है। हम केवल आपकी फरमाइश पेश कर सकते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है जब आपकी फरमाइश हम पेश कर पाते हैं। जैसे कि ये अगला गाना अशोक की पसंद का, और ये है मुकेश जी की आवाज़ में, फिल्म है आशिक, 1962।

और अब एक बात क्रिकेटर्स के बारे में और मुकेश जी के बारे में, ये बात थोड़ी पुरानी है। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे होंगे जो क्रिकेटर चंद्रशेखर के नाम से वाकिफ होंगे। क्रिकेटर चंद्रशेखर मुकेश जी के बहुत बड़े फैन थे, और अगर पिच पर मुकेश जी के गीत की आवाज़ आ जाती तो चंद्रशेखर अपना सलाम देते और रुकते और सलाम देते, भीड़ भी समर्थन में गूंज उठती। सुनील गावस्कर कभी कभी चंद्रशेखर को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मुकेश जी का कोई गाना गुनगुनाते रहते। चंद्रशेखर के इस जुनून से उनके साथी क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ और सैयद किरमानी और कई जर्नलिस्ट भी, जो उस समय बहुत भारी मात्रा में क्रिकेट मैच कवर करने जाते थे, आजकल तो बातें कुछ बदल गई हैं, लेकिन वो बात फिर कभी, तो कई जर्नलिस्ट भी इस बात से बहुत प्रभावित थे कि क्रिकेटर चंद्रशेखर को मुकेश जी के गाने बहुत पसंद हैं। तो आइए चलें, हमें भी आपकी पसंद बहुत पसंद है, और अगला गाना जो है वो है दिलीप कुमार साहब की, ये फिल्म थी, फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये मधुमति, और इसमें उनके साथ हीरोइन जो थी बहुत ही प्यारी हीरोइन थी फिल्म मधुमति में, वैजयंती माला जी। तो पेश है आपके लिए

गुरु पूर्णिमा छिया, गुरुओं के लिए इस दिन हम सब सर नवाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें शिक्षा दी इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और CBFC हमारे जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, एथनिक प्रोग्राम कहते हैं उन्हें, जैसे कि आपका अपना कार्यक्रम है महक जो है हिंदी में, उसको सपोर्ट करती है। और CBFC के सपोर्ट को हम बहुत बहुत मानते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और अपनी पसंद हम तक यहाँ रेडियो पर तो आप पहुँचा ही सकते हैं, आप ईमेल भी भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com.au mahakradio@yahoo.com। और जैसे मैंने बताया पहले, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है महक के नाम से, MAHAK, इसमें अगर आप शामिल होना चाहें तो बहुत ही आसान है। यहाँ स्टूडियो में फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर दीजिए और हम आपको महक ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिससे आपको महक के बारे में बहुत सी बातें पता चलती रहेंगी। तो अगला गाना राज कपूर साहब की फिल्म का है और बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था ये, और ये है फिल्म है श्री 420।

0: जीवन की कहानी। अगले सप्ताह जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं संजय दत्त, मुमताज, मीना कुमारी, अनूप जलोटा और भगवान दादा। और जो मशहूर लोग हैं जिनके जन्मदिन हैं अगले सप्ताह, उनमें शामिल हैं बिजनेसमैन स्वर्गीय JRD टाटा और लेखक स्वर्गीय प्रेमचंद जी। महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। और सब ठीक रहा तो अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर होऊंगा महक लेकर यहाँ 2RRR 88.5 FM पर। और अंतिम गाना जो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ वो मेरी पसंद है और फिल्म है आनंद। इसे सुनते हुए मुझे सुखदेव जसवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: मैंने